मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

से उठता है। पत्तों पर ठहरी हुई बूंदे मोतियों से चमकती हैं और पक्षियों का मधुर कलरव मन को आनंद से भर देता है। हर बूंद जैसे संदेश देती है कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर हमेशा मौजूद है। नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया।

0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। कृषि चर्चा कार्यक्रम में समय है किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनिए तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन विषय पर डॉक्टर रिंकी सिंह चौहान से की गई भेंटवार्ता। भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से तिल और मूंगफली की फसल आपके खेत में खड़ी है। जो भी तिलहनी फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, उनमें कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से वैज्ञानिक फसल सुरक्षा डॉक्टर रिंकी चौहान साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो भी तिलहनी फसलें हैं, चाहे मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, इसमें कौन कौन से हानिकारक कीट हैं, बीमारियां हैं, जिनका प्रबंधन किसान भाई बहनों को करना है।
3: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हम पहले मूंगफली की बात करेंगे कि सबसे पहले तो सफेद गिडार यानी उसे कहते हैं व्हाइट ग्रब्बी, एक मूंगफली का बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है। लार्वा है वो सफेद रंग की होती है और जो इसके सिर कहेंगे वो भूरा कत्थई रंग का और बहुत ही कड़क होता है, और जो उसके जो बाकी का शरीर है वो डिवाइड यानी कि कुछ खंड में विभाजित होते हैं, और जब हम उन्हें हाथ से छुएंगे तो वो गिडार के गेंडुल के समान मुड़कर गोल हो जाते हैं। इस कीट की जो प्रोड है वो मूंगफली के मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मुख्य मूंगफली के फसल को सिर्फ और सिर्फ इसके गिडार यानी कि लार्वा से ही नुकसान पहुंचता है। जब से इसकी लार्वा खेत में छोटे से जब तक बड़ी होती है तब तक ये जो मूंगफली की जड़ें हैं उसे खाकर नष्ट करती हैं, और उसके बाद जो मूंगफली खेत में जो बनी होती है, जो फल उसके छोटे छोटे बने होते हैं, उसका जो कवच होता है उसके ऊपर भी जो इसके कीट है, जो लार्वा है, वो खरोच कर उसे नुकसान पहुंचती है।
2: तो इसका नुकसान का स्तर क्या है डॉक्टर साहब?
3: जो ये सफेद गिडार होती है इनकी कुछ कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं कि जो ये 100% तक भी मूंगफली के फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसीलिए इसका प्रबंधन भी बहुत जरूरी है।
2: तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो प्रबंधन कैसे हो?
3: पहले तो ये है कि जो इसके पोषक पेड़ होते हैं, पोषक पेड़ यानी कि जो इनके प्रौड हैं, ये लोग खेत में तो नहीं रहते पर जो हमारी मूंगफली की फसल है उसके किनारे, आप जानते हैं कि अगर खेत के किनारे नीम का पेड़ है, किसी ने मोरंगा लगाया हुआ है ड्रमस्टिक, तो ये क्या करेंगे, प्रौड जाकर उन किनारे बसे हुए खेतों में जाकर उसके ऊपर पत्तियां खाएंगे और फिर उन्हीं के ऊपर रहेंगे, और 3-4 दिनों के बाद क्या करेंगे कि जो हमारी खेत है वहां पर उस खेत में जाकर अंडे देते हैं। जब अंडे के अंदर से जो लार्वा निकलती है सफेद गिडार, वो क्या करेगी, जो मूंगफली है उसकी जड़ों को खाके नष्ट करती है। जब तक ये फसल खेत में रहती है तब तक ये नुकसान करेगी, उसके बाद प्यूपा हो जाता है, और जब अगले सीजन जब तक की पहली बरसात प्रथम वर्षा होती है तो फिर से ये प्रौड निकलते हैं। तो हमें क्या करना है, जो पोषक पेड़ है उनसे हमें इन कीड़ों को निकालना होता है। जैसे हम क्या है, पेड़ को हिलाएंगे तो ये कीट जब इनके प्रौड नीचे गिरेंगे तो हमें इन कीटों को इकट्ठा करके उन्हें नष्ट करना चाहिए। उसके बाद हमें जो ये हमारी मूंगफली की फसल है उसके लिए बुवाई से 3 से 4 घंटे पूर्व जो क्लोरपाइरीफॉस 20% EC या

0: फिर क्विनाल्फास 25% ईसी जो दवा है 25 मिली प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए।
1: तो ये समस्या नहीं आएगी।
0: हाँ, तब ये समस्या कम हो जाएगी।
1: और खड़ी फसल में?
0: और खड़ी फसल में अगर हम बात करेंगे, उसके अंदर अगर प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो क्लोरोफायरीफॉस या क्विनाल्फॉस जो रसायन होती है उसकी 640 मिली प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के पानी के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। जो फेरोमोन ट्रैप इस व्हाइट ग्रब यानी कि सफेद गिटार के लिए हमें एनिसोल ट्रैप और मिथोक्सी बेंजीन ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उसके सिवाय हमें लाइट ट्रैप है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। आगे आने वाले सीजन में हमें सिर्फ और सिर्फ कीटनाशक के भरोसे नहीं रहना है,
1: यानी जैविक उपाय को
0: भी अपनाते रहेंगे, तभी जो कीट है उसका हमें बेहतर नियंत्रण देखने को मिलेगा।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ दीमक की समस्या है वहाँ
0: देखिए, इसके लिए भी जो हमने सफेद गिटार के लिए सिंचाई के पानी के साथ जो हमने दवाइयाँ इस्तेमाल की है, वही दवाइयाँ इसे भी काम आती है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे तिलहनी फसलों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 7990495553 7990495553।
1: डॉक्टर रिंकी चौहान, आज आप कार्यक्रम में आई और तिलहनी फसलों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तिलहनी फसलों में सामयिक प्रबंधन विषय पर अभी आप डॉक्टर रिंकी सिंह चौहान से की गई ये भेंट वार्ता सुन रही थी। भेंट की थी डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। सुविचार हमारे जीवन की नींव होते हैं, ये हमारे मन को शांत रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आज के सुविचार में सुनिए समय का सदुपयोग के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का।
3: समय शाश्वत है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह जिसे जहाँ पहुँचाना चाहता है उसी प्रकार की आधार भूम बनाता है। नीर क्षीर में अंतर करने का हंस विवेक समय के पास रहता है। त्याग संस्कार और परोपकार समय की उर्वर भूमि में पनपता है। प्रतिकूलता को अनुकूलता की ओर मोड़ने की सामर्थ्य समय के पास है। बड़ी उड़ान भरने वाले रुकने का नाम नहीं लेते, पर उन्हें देखने वाले निराशा में डूबने लगते हैं। प्रयास सामान्य रहने पर समय नहीं रिझता, वह तो असंभव को संभव कर दिखाने वाले हीरों को तराशने में लगा रहता है। अभूतपूर्व कीर्तिमान रचने की अकूत शक्ति समय के पास है। नई राह बनाने में समय अद्भुत है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जो उपलब्धि हाथ नहीं लगती, समय उससे उत्कृष्ट देने के लिए विलंब करता है। सार्वभौमिक समय अग्नि परीक्षा लेता है। संघर्ष की आग में समय स्वर्ण की तरह तपाकर खड़ा बनाता है। एक के बाद एक परीक्षा लेने में समय की कोई तुलना नहीं है। बाधाओं से डरने वालों की चिंता समय नहीं करता, समय इतिहास बनाता है। वही विचार सार्थक बनता है जो अपने समय की वेदना को नया अर्थ देता है। जीवन से जूझते हुए आत्मीय के मंगल में भविष्य की विनती करते हुए कहा जाता है, पता नहीं वह शुभ समय कब आएगा। समय सभी की मंगल कामना सुनता है, वह मूल्यांकन करना जानता है। समय कभी नहीं दिखता, वो संसार की लीला से अलग है। परिश्रम करना मनुष्य के वश में है, उसका फल देना समय के हाथ में है। वो प्रज्ञा की पहचान करता है, समय धैर्य को प्रतिभा बनाता है। हर अमूल्य पल अनूठे अवसर लाता है। समय का दूसरा नाम काल है, जो जीवन का नियंत्रक है। समय संयोग वियोग है। दीपक का तेल चुक जाने पर रूई की बाती जलकर मंद मंद प्रकाश बिखेर रही थी। एक गृहस्थ ने पूछा, तुम जीवन भर आलोक बिखेर कर दूसरों का पथ प्रदर्शन करते रहे, संसार के साथ इतनी भलाई करने पर भी तुम्हारा दुखद अंत देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। बुझते दीपक ने अंतिम आभा बिखेरते हुए कहा, भौतिक जगत में जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है। हर क्षण का उत्कृष्ट नियोजन करके जीवन की मूल्यवान घड़ियों को व्यर्थ होने से बचाना है। रचनाकार अपने समय की उपज होता है। परिवर्तन शिष्ट का शाश्वत नियम है। समय क्षमा नहीं करता, बीता समय फिर नहीं लौटता।

0: बदलते समय को पकड़ने में प्रयोग का संसार मिलता है, समय की प्रतीक्षा सहनशीलता बढ़ाती है। रात बीतने के बाद सूर्योदय निश्चित है, दुख के बाद सुख आता है, समय अभाव पाने वाले को महापुरुष बनाता है। हर चीज के होने का समय होता है, परिश्रम समय के इतिहास में नया अध्याय जोड़ता है। विपरीत समय रहने पर अच्छाई से दूरी हानि कराती है, कभी कभी अभिशाप वरदान सिद्ध हो जाता है। भरतीहर का हार खूंटी निकल गई तो हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा गंगा तट पर हुई। समय के आगे किसी की नहीं चलती, दुख हर अंग में आंखें बनाता है, सफलता का उपाय समय जानता है। असाधारण उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए सर्वोच्च साधना अनिवार्य है। संकल्प विकल्प तोड़ता है, समय दान सबसे बड़ा दान है। यह धैर्य का सूत्र है, आशा देकर किसी का समय गंवाना पाप है। किसी के पास समय नहीं रहता, समय निकालना पड़ता है, समय चुनौतियों को कसौटी पर परखता है। असमर्थता कुछ भी सुनने को विवश करती है, उचित समय पर किया गया थोड़ा कार्य बड़ा उपकारक सिद्ध होता है, असमय में बड़ा उपकार निष्फल चला जाता है। असाधारण लोग विपत्ति को लौटाकर नई राह बनाते हैं, अपने जीवित रहते वे अभूतपूर्व कार्यों से अमर हो जाते हैं। समय का अपना विधान है, मर्यादा न तोड़ने वाले को समय बचाता है, खेलने का अवसर और क्षेत्र देता है। समय के हंसने पर निर्बल हरा देते हैं। समय अखंड है, पल पल का सदुपयोग परम सत्य है। समय विधान में बड़े बड़े गिरते उठते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन का सर्वोच्च कवच समय की सच्चाई है, समय सकारात्मक संस्कार का शाश्वत मूल्य है, यह सत्य का साक्षात्कार करता है, लक्ष्य संधान की सार्थक भूमिका ही समय का मूल मंत्र है। समय आने पर जीवन अपना मार्ग पा जाता है।
1: आज के सुविचार में आपने सुना समय का सदुपयोग के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था।

0: साक्षात्कार का शाश्वत मूल्य है। ये सत्य का साक्षात्कार करता है। लक्ष्य संधान की सार्थक भूमिका ही समय का मूल मंत्र है। समय आने पर जीवन अपना मार्ग पा जाता है।
1: आज के सुविचार में आपने सुना समय का सदुपयोग के बारे में। स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भोलेनाथ के द्वार की ओर बढ़ते कदमों के साथ हृदय के सारे भार हल्के होने लगते हैं। आइए आपको शिव भक्ति की इस पवित्र यात्रा पर ले चले, जहां मन स्वतः ही शांत हो जाता है।

भगवान शिव का वह दिव्य स्वरूप, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और कंठ में विष का भार, वे त्याग, करुणा और कल्याण का प्रतीक हैं।

हे गोविंद, मन को वृंदावन बना दो, अपने प्रेम की भक्ति से जीवन सजा दो, अहंकार मिटे और करुणा का दीप जले और हम गोविंद के स्मरण में रमे रहें।

जय रघुनंदन। ये जय घोष प्रभु श्री राम की मर्यादा, करुणा और धर्म स्वरूप का स्मरण कराता है। श्री राम का नाम लेते ही हृदय में शांति और करुणा आ जाती है। आइए श्रद्धा भरे मन से इस मधुर भजन को सुनिए।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति की रस में और डूबने के लिए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 272।

सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालीपुत्र अंगद के युवराज घोषित होने के पश्चात श्री राम तथा लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे हैं। ऋतुचक्र अपनी मंथर गति से घूम रहा है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही राजा, तपस्वी, व्यापारी तथा याचक, जिनका दैनंदिन कार्यकलाप वर्षा के कारण अव्यवस्थित हो गया था, पुनः आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु के आगमन पर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अनुराधा पुनवाल और श्रीकांत पारगावकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक। मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
1: हमें ऐसा एक और खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य 20 नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुम् समर्थं सुदृढम् अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रूसदेशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिकयात्रायै मॉस्कोनगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेशमन्त्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27वें दिनाङ्कपर्यन्तं जापानस्य 4-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ टोक्यो नागोया ओसाका चेत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यति अथ च जापानं प्रति भारतस्य अद्यावधि बृहत्तमस्य व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले 200+ व्यापार प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिं प्रति विद्यमानं महत्वाकांक्षायाः व्यापकतां दर्शयति। इयं यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा भारतं जापानं च व्यापार निवेश सम्बन्धान् महत्वपूर्णतया सुदृढीकर्तुं प्रयतमानौ स्तः। ब्रिक्स क्रीडामन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम् नगरे क्रीडा सम्बद्ध संयुक्त घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्ना। घोषणापत्रे सदस्यदेशैः संवादेन पारस्परिक सम्मानेन अथ सर्वसमावेशभावेन क्रीडाक्षेत्रे सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनरुक्ता। एतत् उपवेशनम् अस्मिन् वर्षे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आयोजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य एलुरु जनपदस्य मुसुनुरु ग्रामं गमिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मुसुनुरु ग्रामे भारतस्य प्रथमस्य अनुवांशिक रूपेण असंशोधितस्य उच्चविस्तार क्षमतायुक्तस्य पॉपकॉर्न मेज इत्यस्य संकर बीजस्य शुभारम्भं करिष्यति। असौ कृषकेभ्यः सम्माननं प्रदास्यति तथा कृषिक्षेत्र सम्बन्धान् हितधारकान् अन्यान् च सहभागिनः सम्बोधयिष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ रहना केवल अच्छा महसूस करना नहीं है, यह एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की नींव रखता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए चंदन प्रकृति का अनमोल उपहार। जानकारी दे रही है नीना सुनकर।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक उपहार की जिसकी सुगंध मन को शांति देती है, जिसका स्पर्श शरीर को ठंडक पहुंचाता है और जिसका उपयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में होता

0: होता है बल्कि सेहत और सौंदर्य में भी किया जाता है। ये है चंदन। चंदन भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक सुगंधित लकड़ी नहीं बल्कि ये एक औषधीय और आध्यात्मिक तत्व भी है। हजारों वर्षों से इसका उपयोग पूजा पाठ, सौंदर्य, आयुर्वेदिक उपचार और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। इसके गुण इतने व्यापक हैं कि इसे दिव्य औषधि भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि चंदन हमारे शरीर, मन और सेहत के लिए कैसे लाभदायक है और इसे अपने जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है। चंदन का नाम सुनते ही मन में एक शीतलता और सुकून का एहसास होता है। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि इसे इत्र और धूप बत्तियों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में चंदन के दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं, सफेद चंदन और लाल चंदन। सफेद चंदन अपनी शीतलता और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है जबकि लाल चंदन त्वचा और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अगर त्वचा की बात करें तो चंदन सौंदर्य और त्वचा की देखभाल का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ये त्वचा को ठंडक देने, दाग धब्बों को कम करने और उसे प्राकृतिक रूप से निखारने का काम करता है। प्राचीन समय से ही महिलाएं चंदन का लेप बनाकर चेहरे पर लगाती थीं, जिससे त्वचा मुलायम और धमकती रहती थी। यहाँ तक कि आज भी कई सौंदर्य प्रसाधनों में चंदन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये त्वचा को गहराई से साफ करता है और प्राकृतिक नमी बनाए रखता है। जो लोग मुहासों और तैलीय त्वचा की समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए चंदन का पेस्ट बेहद फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये त्वचा के अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और उसे संतुलित बनाए रखता है। चंदन सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसे गर्मी से राहत देने वाली औषधि के रूप में देखा जाता है। ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी को दूर करने में मदद करता है और शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। जिन लोगों को बार बार नक्सीराने, जलन या शरीर में अधिक गर्मी महसूस होने की समस्या होती है उनके लिए चंदन बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इसका लेप माथे पर लगाने से न केवल ठंडक मिलती है बल्कि सिर दर्द और तनाव भी कम होता है। आज के समय में जहाँ तनाव और मानसिक अशांति आम बात हो गई है, चंदन मानसिक शांति और ताजगी का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इसकी सुगंध मस्तिष्क को शांत करने में मदद करती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाती है। यही कारण है कि योग और ध्यान के समय चंदन की अगरबत्ती जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। चंदन के तेल का उपयोग एरोमाथेरेपी में भी किया जाता है क्योंकि ये मन को सुकून देने और चिंता को दूर करने में सहायक होता है। जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं वे रात में चंदन का तेल सूंघने से बेहतर नींद पा सकते हैं। दिल की सेहत के लिए भी चंदन को बहुत लाभकारी माना जाता है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं, वे चंदन का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में चंदन के अर्क को हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखने और रक्त परिसंचरण को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर पाचन की बात करें तो चंदन पेट की जलन और एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। ये आंतों को साफ करता है और पाचन को दुरुस्त बनाए रखता है। ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसके अलावा चंदन का उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी किया जाता है। पूजा पाठ में चंदन का तिलक लगाने की परंपरा भी इसी कारण से चली आ रही है। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। चंदन का तेल मालिश के लिए भी बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ये शरीर को आराम देता है और मांसपेशियों की थकान को दूर करता है। श्रोताओं, चंदन केवल एक सुगंधित लकड़ी नहीं बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को शांति देने वाला एक दिव्य उपहार है। ये सौंदर्य, सेहत, मानसिक शांति और धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इसे अपने जीवन में शामिल करें और इसके अनमोल गुणों का लाभ उठाइए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: चंदन प्रकृति का अनमोल उपहार, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे अनीता श्रीवास्तव से सुनेगा काव्य पाठ। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर

समाज फरमाइएगा। आकाशवाणी प्रयागराज मरकज की पेशकश सुनेगा गुफ्तगू, मौजू है रशीद जहां की तहरीरों में हकीकत निगारी। गुफ्तगू की है डॉक्टर कहकशा इरफान और डॉक्टर अब्दुल मुहिम ने। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज अयोध्या और बलिया जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है जीव रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर सृष्टि माथुर का ख्याल गायन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर घर आंगन कार्यक्रम बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर कृषि रक्षा रसायनों का सुरक्षित प्रयोग इस विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते ही शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नेशन नेक्स्ट में विकसित भारत की विकास धारा में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश कुमार यादव से की गई भेंटवार्ता का विषय है मुख कैंसर कारण और निवारण। भेंट करता है रामजीत मौर्य। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर पशुओं में सर्राग रोग कारण और निवारण विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर सरस्वती शुक्ला। वेट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आंखों से जुड़ी समस्या विषय पर डॉक्टर रचना अग्रवाल नेत्र रोग विशेषज्ञ SGPGI लखनऊ से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। श्रोता सुनेंगे वेट करता है देवाशीष। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी के गाए अवधि लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर जगजीत सिंह के गाए भजन आप सुनेंगे। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आपको सुनाया जाएगा रात 9:30 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरव्यू प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्र परिचय कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आंखों से जुड़ी समस्या विषय पर डॉक्टर रचना अग्रवाल नेत्र रोग विशेषज्ञ SGPGI लखनऊ से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है देवाशीष। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है जीव रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य। जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ करुणा है वही मानवता है। जो प्राणी के जीवन का सम्मान करे वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकार।

कारी है। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल धर्म का विषय नहीं बल्कि हमारी मनुष्यता की पहचान है। जीव रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य। संसार में असंख्य जीव जंतु, पशु पक्षी और सूक्ष्म जीव प्रकृति के इस विराट परिवार का हिस्सा हैं। प्रत्येक जीव अपने जीवन को जीना चाहता है, सुख चाहता है, भय और पीड़ा से मुक्त रहना चाहता है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि, विवेक और संवेदना प्रदान की, इसलिए उसका दायित्व केवल अपने जीवन की रक्षा करना नहीं बल्कि उन जीवों के प्रति करुणा रखना है जो अपनी रक्षा के लिए मनुष्य की सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में जीव मात्र के प्रति करुणा और सम्मान की भावना अत्यंत प्राचीन है। हमारे उपनिषदों में समस्त सृष्टि में एक ही परम तत्व के दर्शन की बात कही गई है। ईशावास्य उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वयाचिक जगन्त्यं जगतः, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वही परमात्मा से व्याप्त है। जब हम प्रत्येक जीव में उस परम सत्ता की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तब किसी जीव के प्रति क्रूरता का विचार भी हमारे भीतर सहज नहीं रह जाता।

श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समदृष्टि का संदेश देते हुए कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य विद्वान गाय हाथी कुत्ते और अन्य प्राणियों में से एक ही परम तत्व को देखता है। उसका मूल संदेश यही है कि बाहरी रूप अलग हो सकते हैं किंतु जीवन की चेतना के प्रति सम्मान हमारी दृष्टि का आधार होना चाहिए। जब हम जीव रक्षा की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल किसी घायल पक्षी को बचाना या किसी पशु को भोजन देना ही नहीं, जीव रक्षा एक व्यापक जीवन दृष्टि है। किसी प्यासे पक्षी के लिए जल रखना, गर्मी में पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना, घायल जीव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, अनावश्यक रूप से किसी जीव को कष्ट न देना और प्रकृति के आवासों को नष्ट होने से बचाना, ये सभी जीव रक्षा के ही रूप हैं। कभी आपने देखा होगा कि गर्मी के इन दिनों में कोई पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटकता है। हमारे घर की छत या बालकनी में रखा एक छोटा सा जलपात्र उसके जीवन का आधार बन जाता है। हमारे लिए वह केवल एक कटोरी पानी है, लेकिन किसी प्यासे पक्षी के लिए वही पानी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। यही करुणा की वास्तविक शक्ति है। छोटा सा प्रयास लेकिन किसी जीव के लिए बहुत बड़ा सहारा।

प्रकृति ने संसार को एक दूसरे से जोड़कर बनाया है। मधुमक्खियां परागण में सहायता करती हैं, पक्षी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, केचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं और अनेक जीव पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी एक प्रजाति का अत्यधिक नुकसान केवल उसी जीव को प्रभावित नहीं करता बल्कि प्रकृति की पूरी व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। आज जब जंगल कम हो रहे हैं, प्राकृतिक आवास बदल रहे हैं और अनेक जीवों के सामने अस्तित्व की चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब जीव रक्षा का अर्थ और भी व्यापक हो गया है। पेड़ लगाना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, प्लास्टिक और कचरे को प्रकृति में न फैलने देना तथा पक्षियों और पशुओं के प्राकृतिक आवासों का सम्मान करना भी जीवों की रक्षा है। जीव रक्षा का सबसे सुंदर प्रभाव स्वयं मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जब हम किसी निर्बल जीव की सहायता करते हैं तो हमारे भीतर संवेदना, धैर्य और विनम्रता का विकास होता है। दया हमें ये सिखाती है कि संसार केवल मैं से नहीं चलता, संसार हम से चलता है।

जल रखे, आवश्यकता हो तो पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करें। घायल जीव दिखाई देने पर किसी सक्षम पशु चिकित्सक या स्थानीय पशु सहायता संस्था से संपर्क करें। पेड़ पौधों की रक्षा करें क्योंकि पेड़ असंख्य जीवों का घर है। जल और पर्यावरण को प्रदूषित न करें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी जीव को केवल मनोरंजन या क्रूरता के कारण कष्ट न दें। जीव रक्षा वास्तव में किसी दूसरे के जीवन का उपकार नहीं बल्कि अपने भीतर की मानवता की रक्षा है। जिस हृदय में किसी असहाय प्राणी की पीड़ा देखकर संवेदना जागती है, वही हृदय वास्तव में जीवित और

तो आइए आज हम एक ये संकल्प लें कि जीव रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य है, इस पर थोड़ा विचार करें, अपने आचरण में इसे अपनाएं। हमारे हाथ किसी जीव को पीड़ा देने वाले नहीं बने, सहारा देने वाले बने। हमारी वाणी केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील हो और हमारा हृदय इतना विशाल हो कि उसमें संसार के लिए, हर प्राणी के लिए करुणा का दीप जलता रहे। करुणा की एक बूंद जहां गिर जाती है वहां मानवता की धरती खिल जाती है। जीवों के जीवन की जो रक्षा करे वही मनुष्य कहलाने का सच्चा अधिकारी है। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही क्षणों में प्रसारित किए जाएंगे।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
3: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
2: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
3: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
2: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
3: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
2: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर। बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर

0: कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और इस क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तराशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने इस क्षेत्र में युवाओं के काम की सराहना भी की। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 3,54,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अब उन्हें हर साल 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2,00,000 रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम एकत्र हुए हैं।
0: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के झंडे वाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री योगी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
3: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पे छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
0: जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारू नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कल काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, यामानाशी प्रांत और जापान के बीच संबंधों को लंबे समय तक और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के विकास को बढ़ावा देना है। इससे पहले जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, साथ ही बीएलओ से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादाबाद अमरोहा के ब्रज घाट तक करीब 60 किलोमीटर सड़क को आज तक के लिए 0 ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि वहां हाईवे

0: पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
1: सावन के आखिरी सोमवार के परिपेक्ष में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डायवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन है वो अभी के लिए चल रहे हैं।
0: वाराणसी में वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
2: इस्लाम सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबी अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबी अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है, ये मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबी अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में इस बात का ख्याल रखें कि जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं रास्तों से जुलूस निकालें और जुलूस में कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हों। इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट मुकर्रर किया गया है उसी पर सिर्फ जुलूस निकाला जाए।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिषद के मुताबिक वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये पिछले वर्ष से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 सहित मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान भी जताया है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। संत कबीरनगर जिले में घाघरा और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर, बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम पेपर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए सृष्टि माथुर का राग शुद्ध सारंग में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मंगल गायो। द्रुत तीन ताल में निबद्ध हैं, बोल हैं अब मोरी बात। हारमोनियम पर दिनकर द्विवेदी जी हैं और तबले पर साथ दिया है प्रमोद कुमार मिश्र ने।

अभी आप सृष्टि माथुर का राग शुद्ध सारंग में खयाल गान सुन रहे थे। हारमोनियम पर थे दिनकर द्विवेदी और तबला संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। इसी के साथ नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यही समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र

0: स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।

0: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट एनजेडपी का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन 90 डॉलर से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान

0: के लिए प्ले ऑफ खेलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: हर हर महादेव।
2: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। डीजे प्रस्तुत है नमस्ते बरेली। दोस्तों, आज सावन के आखिरी सोमवार की पूरे आधे घंटे की आप सभी के लिए हम लाए हैं विशेष प्रस्तुति बोल बम। आप सभी श्रोताओं को सावन के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष प्रस्तुति को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। मित्रों, आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज हम पहुंचे हैं सात नाथ मंदिरों में से एक थोपेश्वर नाथ मंदिर में, जो कि अपने विशेष शिवलिंग की वजह से बहुत प्रसिद्ध है और बड़ी दूर दूर से यहां पर कांवरिये आते हैं और जलाभिषेक करते हैं, साथ में आम जनता भक्त लोग प्रभु के शिवलिंग पे गंगा जल अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती हैं।

0: दोस्तों, बरेली की सड़कों पे जिस तरफ निगाह उठाओ कांवरिये ही कांवरिये नजर आते हैं। भगवान शिव की भक्ति में लीन ये कांवरिये मन में अगाध आस्था लेकर गंगा जल लेकर आते हैं और प्रत्येक सोमवार को, सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी रास्ते में कुछ कांवरियों से भेंट हुई, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो मित्रों, इसी सफर में हमें मुलाकात हुई कांवर लाते हुए कुछ भक्तों से। तो जय भोले की, क्या नाम है आपका?
1: अजय शर्मा।
0: अजय शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मलपुर, ग्राम मलपुर के।
0: तो मलपुर कहाँ पड़ता है?
1: ये फरीदपुर और भुता के दोनों के बीच में है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो कितने वर्षों से आप लोग जल ला रहे
1: हैं? हमको तो 5 वर्ष हो गए जलाते हुए।
0: 5 वर्षों से आप जल लेके आ रहे हैं, तो कहाँ से जल उठाते हैं आप?
1: कचला से जल उठाते हैं, ग्राम मलपुर में जल लगा चढ़ाते हैं शिव मंदिर में।
0: आप लोग चालीसा भी रखते होंगे?
1: जी,
0: प्रभु के प्रति आपकी आस्था काफी है ना?
1: जी
0: है। अजय शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शासन प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग रहा? आप लोग पैदल जाते हैं, रास्ते में आपके लिए क्या सुविधा होती है, लोग किस प्रकार से आपका सेवा करते हैं, उस बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
1: प्रशासन की ओर से मेरी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सम्मान कर रही है और जो भंडारे वाले लोग हैं हम लोगों को बहुत ज्यादा मिन्नत करके और उससे प्रेम भाव से बैठालते हैं और भंडारा खिलाते हैं, बहुत सम्मान देते हैं हम लोगों को।
0: तो जैसे रात हो जाती तो आप रात भर चलते हैं?
1: नहीं, रात हो जाती सर, रात को कहीं भी भंडारे वाले लोग होते, जगह जगह स्थान बना हुआ है उसके लिए वे हाथ जोड़े निवेदन करते हैं, सर हमारे यहाँ पे आइए, रात को विश्राम कीजिए, यहाँ पे भोजन खाइए करिए और आराम करिए वहाँ पे।
0: तो मतलब भोले की कृपा बरसती रहती है, प्रकार की कोई कठिनाई आपको?
1: कोई कठिनाई नहीं होती है, बहुत सम्मान मिलता है।
0: क्या नाम है भैया आपका?
2: पुष्पेंद्र।
0: तो पुष्पेंद्र भाई, आप लोग कितने लोगों की टीम लेके निकले हुए
2: हैं? वो है 31 लोग हैं।
0: 31 लोग, मतलब सब गांव के ही हैं? क्या नाम है भैया आपका?
2: विशाल।
0: विशाल भाई, आप भी कितने सालों से जल लेने जा रहे हैं?
2: इस बार 6 साल है।
0: 6 साल, सब मलपुर ही जल चढ़ाते हैं?
2: हाँ, सब मलपुर पे ही।
0: क्या नाम है आपका?
3: राजीव।
0: राजीव भाई, आप कितनी तारीख को जल लेने निकले थे?
3: 18 तारीख।
0: 18 तारीख को आप लोग निकले थे, तो कब कचला पहुँचे थे आप लोग?
3: कचला पहुँचे थे हम 19 में।
0: 19 में पहुँच गए थे, 19 तारीख से आप लोग कचला में ही थे।
3: जी।
0: तो अब वहाँ से जल लेके आप लोग अपने गाँव जा रहे हैं, है ना?
3: जी,
0: मलपुर।
3: जी,
0: अच्छी बात है। क्या नाम भैया आपका?
4: महेश।
0: महेश भाई, कितने वर्ष हो गए आपको?
4: हमको 8 वर्ष हो गए लाते हुए।
0: 8 वर्ष आपको हो गए? आप लोग सब एक साथ कैसे इकट्ठे होते हैं, कैसे पहले से ही आप लोगों की प्लानिंग रहती है कि एक समूह बनाते हैं कि मतलब इतने इतने लोग जाएंगे?
4: हाँ, पहले से प्लानिंग बना लेते हैं, जैसे सब लोग जाएंगे जा तारीख को।
0: अच्छा, तो आपस में चंदा करके आप लोग सब ये व्यवस्था करते हैं अपना, ट्रैक्टर और ये सब कावर वगैरह का?
4: हाँ।
0: सब एक जैसा खाना पीना सबका एक जैसा ही होता है ना?
4: हाँ।
0: क्या नाम है भैया आपका?
5: सोनू।
0: तो सोनू भाई, कैसा लगता है सावन में भोले की भक्ति करते हुए?
5: बहुत अच्छा लगता है,
0: मन को शांति मिलती है
5: बहुत ज्यादा।
0: संसारिक मोहमाया से ये पूरा महीना आप लोग दूर रहते हैं, भोले के चरणों में रहते हैं। भोले बाबा तो कृपालु हैं और उनकी प्रेम और दया हमेशा बरसता रहे, ऐसी हमें अपेक्षा है। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, रास्ते में हमें कुछ डाक कावर ले आते हुए भोले लोग मिले और हमने उनसे बात करी।
1: तो भोले, क्या नाम है आपका?
2: सर्वेश।
1: सर्वेश भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: गुलड़िया हजारीलाल।
1: तो गुलड़िया हजारीलाल कहाँ पड़ता है ये?
2: जिला बरेली, तहसील फरीदपुर, थाना भुता।
1: जिला बरेली, तहसील फरीदपुर, थाना भुता में गुलड़िया
2: हजारीलाल
1: पड़ता है। तो डाक कावर आप लोग लेके निकले अपने साथियों के साथ, तो इसके क्या नियम होते हैं?
2: इसके नियम यही है कि व्रत रख के कावर भरो और कावर भरने के बाद आरती करके वहां से दौड़ो। दौड़ने के बाद पीछे से हाथ निकाल के दूसरे को कावर दो और दौड़ते दौड़ते जब अपने स्थान पर पहुंचो तो वहां पहुंचने के बाद जब तक आरती हो तब तक बराबर पैर चलते रहे।
1: अच्छा।
2: कावर रुकना नहीं चाहिए, पैर रुकना नहीं चाहिए और उसके बाद में तुरंत कावर भोलेनाथ को विसर्जन कर दी जाती है,
1: अर्पित कर दिया जाता है जल। और जितने साथी होते हैं सब लोग इकट्ठे होते हैं,
2: सब इकट्ठे होते हैं।
1: सरवेश भाई, आपने डाक कावर के विषय में हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मित्रों, सावन के अंतिम सोमवार को नाथ नगरी के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह 4 बजे से जलाभिषेक शुरू हो गया, जो कि देर रात तक चलेगा। सावन भर शिव भक्ति में लीन रहे श्रद्धालु अंतिम सोमवार को भी भगवान शिव का पूजा अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। नाथ नगरी के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में जल, बेलपत्र, पुष्प, दूध और पूजन सामग्री की व्यवस्था की गई है। मंदिरों के बाहर बड़ी संख्या में दुकानें लगनी शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में कांवड़िए भी

गंगा जल लेकर नाग नगरी लौट चुके हैं। आज वो अपने निर्धारित मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करेंगे, इसके बाद प्रसाद वितरण कर घर लौटेंगे। वहीं जो श्रद्धालु सावन के पूर्व सोमवारों में जलाभिषेक नहीं कर सके, वे भी अंतिम सोमवार को मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। शहर में कावड़ियों और शिव भक्तों की सेवा के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। रविवार को कई शिविरों में श्रद्धालु और कांवड़ यात्रियों के लिए जलपान, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। आयोजकों ने शिव भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया। मंदिरों में भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु से व्यवस्था बनाए रखने की अपीलें भी की गई हैं। सेवा शिविरों में स्थानीय लोगों ने भी सहभागिता की है। सावन के अंतिम सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में घंटे, घड़ियाल और हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सावन की भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।

0: दोस्तों, धोपेश्वरनाथ मंदिर में हमारी भेंट हुई यहाँ के पुजारी जी। पुजारी जी, आपका नाम क्या है?
1: मेरा शुभ नाम है नितिन गिरी।
0: नितिन गिरी जी यहाँ के पुजारी हैं और भोलेनाथ के सेवा करते हैं, तो आप कितने वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं?
1: मैं अपने पैदाइश से ही सेवा दे रहा हूँ और मेरे पूर्वज तीसरी पीढ़ी है और धोपेश्वरनाथ काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर धोपेश्वरनाथ जी है और यहाँ कांवरी

0: हजारों से आते हैं। आप बरेली में जब भी जाओगे सातोनाथ में, ये मंदिर सबसे अलग आपको दिखेगा, क्योंकि इसकी पहचान सरोवर से भी है, ट्वेल से भी है, और दूसरी बात कांवरिये जो भी आते हैं कल से लेके आते हैं, काफी जल चढ़ाते हैं। आप जब मंदिर में आओगे तो आपको उसमें शिवलिंग पे एक अलग पहचान दिखेगी, जो उसमें लकीर बनी हुई है, जो कि बरेली में किसी शिवलिंग में नहीं है।
1: तो ये कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? लगभग
0: ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है, पांडवों के टाइम से मंदिर पुराना है ये।
1: अच्छा अच्छा, तो यहाँ उस समय जंगल हुआ करता था?
0: पहले वन बना हुआ था, काफी चारों तरफ से घना जंगल था, सिर्फ एक शिवालय की एक कुटिया कोई मतलब शिवालय था, अकेले भोलेनाथ थे, मतलब कोई शिव परिवार वगैरह नहीं था। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। और हमारे जो बाबा थे गोकर्ण गिरी, उनका 2010 में स्वर्गवास हो गया, उनकी आस्था थी, वही पूजा पाठ खूब करते थे, उन्हीं से हमने भी सीखा और आज हम वही सेवा कर रहे हैं।
1: मतलब आपकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे सेवा दे रही है?
0: हाँ, तीसरी पीढ़ी।
1: तो पंडित जी, मेरा ये पूछना है कि यहाँ कितनी दूर दूर से कांवरिया आते हैं?
0: कांवरिया तो यहाँ बरेली के पूरे जिस कोने से भी कांवरिया आता है, मगर दुर्गेश्वरनाथ बाबा पे जल चढ़ाता है, उसके बाद मन्नतें मांगता है, उसकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। पहले तो जल ये था कि लोग बोतलों में लाते, अब तो बड़े बड़े घड़ों से लोग जल चढ़ाते हैं, क्योंकि पहले से लोगों में जागरूकता और भगवान के प्रति कृपा दृष्टि ज्यादा हो गई है, लोग आस्था ज्यादा रखने लगे हैं बाबा पर।
1: सनातन का झंडा फिर से बुलंद होने लगा है ना?
0: हाँ, सनातन का झंडा जो है बुलंद होने लगा है, और सनातन का झंडा हाथ में ही बुलंद नहीं हो रहा है, दिल में भी हो रहा है और लोगों के अंदर भी चल रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है, और परमात्मा से हम लोगों को डरना भी चाहिए। उसने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, कई जन्मों को भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो जिसने हमें जन्म दिया है, इस संसार में पैदा किया है और मनुष्य के रूप में हमें ये जन्म मिला है, तो हमें मनुष्यता वाले काम भी करने चाहिए, है ना, और प्रभु के प्रति अपनी आगाध आस्था प्रकट भी करनी चाहिए।
0: रक्षाबंधन के बाद से बाबा धोपेश्वरनाथ में भादो प्रारंभ हो जाएगा। भादो में प्रत्येक बृहस्पति का जो मेला होता है, गांव वालों की बड़ी आस्था होती है सरोवर से, बेदर नहाते हैं, उनके जो फोड़ी फुंसी जो भी होते हैं रोग, जिससे वो काफी दुखी होते हैं, वो इस सरोवर के पानी के इतने महत्व है कि इससे उनका ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो जल है ज्यादातर वर्षा का होता है, और वर्षा का जल जो होता है वो सबसे अलग ही होता है।
1: हाँ, तो मतलब चर्म रोग की दूरी भी इस जल से स्नान करने के बाद हो जाती है?
0: हाँ, इसी जल से स्नान करने के बाद ठीक हो जाता है।
1: तो ये कुंड कितना गहरा का होगा?
0: ये कुंड अभी कम से कम 5-5.5 फुट तो अभी है पानी इसके अंदर
1: जी, बाकी इसका बढ़ता घटता रहता है पानी?
0: हाँ, घटता रहता है, कुछ स्रोत हैं, हमारे पीछे नखटिया नदी है, उससे इसके स्रोत मिले हुए हैं, जब वो अपना आती है तो ये भी अपना आने लगता है।
1: तो जो कांवरिये यहाँ आते हैं तो गंगा जल कहाँ कहाँ से लेके आते हैं?
0: कांवरिया ज्यादातर गंगा जल, खास तौर से कचला का मशहूर है, ज्यादातर कचला का जल लेके आते हैं, जो घड़ों से लाते हैं भर के। वैसे तो कांवरियों की आस्था होती है, वो लोग हरिद्वार से भी ले आते हैं, उज्जैन से भी ले आते हैं, प्रयागराज से भी ले आते हैं।
1: तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या उपदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही चाहूंगा कि जो भी भक्त हैं, श्रोताओं लोग भगवान पे आस्था रखें, कृपा रखें, और ज्यादातर मंदिर पे आइए, पूजा करें, और सबका ख्याल रखें,
1: सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हाँ। तो ये जो आखिरी सोमवार है, इसकी क्या महत्वता है?
0: आखिरी जो सोमवार होता है, जो भी मंदिर जो भक्त चालीसा करते हैं, उनका जो चालीसा जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक वो यहाँ से जल चढ़ा के गोपाला सिद्ध बाबा पे जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे, तब तक उनका जो है चालीसा पूर्ण ही कहलाया जाता है। जो सावन में बहुत से लोग एक महीने का भी मानते हैं, तो वो लोग भी यहाँ जो जल चढ़ाते हैं उसके बाद वो गोपाला सिद्ध पे जरूर जल चढ़ाते हैं, नहीं तो उनका चालीसा पूर्ण ही कहलाया जाता है।
1: हाँ, ये मान्यता है कि यहाँ के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब तक
0: आप सिद्ध बाबा पे जल नहीं चढ़ाओगे। सिद्ध बाबा पे आपका दर्शन करना जरूरी है जब आप चालीसा करते हैं, खासतौर से चालीसा, और जो एक महीने पूजा करते हैं सावन में।
1: तो पंडित जी, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, श्रोताओं को मंदिर के विषय में बताया, कांवरियों के विषय में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रावण के अंतिम सोमवार पे गंगा घाट से जल लेकर जलाभिषेक को नाथ नगरी पहुंचने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का रविवार को ही पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शिविर में प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ प्रसाद व टी शर्ट भी बांटे गए। सेवा और समर्पण से हर्षित शिव भक्त कांवड़ियों के हर हर महादेव के जयघोष के साथ पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। सावन के तीसरे रविवार व सोमवार को कांवड़ियों के लिए बनाए गए शिव शिविर की सफलता एवं शिव भक्तों की सुविधा को देखते हुए बीडीए ने चतुर्थ रविवार व सोमवार को भी शिविर लगाया है, जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों ने पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठाया और बीडीए की इस पहल की सराहना की। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्य पांडे, संयुक्त सचिव दीपक कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा कर प्रसाद भी वितरित किया। स्वागत से हर्षित कांवड़ियों ने शिविर में केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थ स्थलों की थीम पर बने सेल्फी पॉइंट पर यात्रा की सुखद स्मृतियां संजोने के लिए फोटो भी खिंचवाए।

अभी आपने सुनी नमस्ते बरेली में विशेष प्रस्तुति बोलबम। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं कुछ लोकगीत। कार्यक्रम में पहला लोकगीत है अंशुनाथ सक्सेना के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ लोग की। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा।
1: लीजिए सुनिए दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू।
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज चौपला, बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फालिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: सेहत की पाठशाला लेकर आया दीपमाला। जी हाँ, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: स्वागत है आपका भी मुकेश जी।
5: डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार बहुत खतरनाक कहा जाता है, लेकिन डेंगू के बारे में कई मिथक भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप डेंगू स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, डेंगू बुखार क्या होता है?
6: देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है, यानी कि मच्छर द्वारा जनित है, जो मच्छर इस वायरस को, डेंगू वायरस को आदमी के शरीर में दे देते हैं। डेंगू वायरस 4 प्रकार का होता है, जिसको

0: सब वार कहते हैं, सब स्पीसीज, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। तो डेंगू बुखार के लक्षणों की अगर हम बात करें
1: जी,
0: इसके लक्षण की एक खास क्लासिकल विधि होती है जिसे कहते हैं डबल माउंटेड हम्प। इसका मतलब यह कि डेंगू बीमारी में बुखार के संग हाथों पैरों में दर्द होता है
1: जी।
0: और जब बुखार उतर जाता है तो आदमी को बहुत ज्यादा कमजोरी होती है और डिहाइड्रेशन होता है। एक बार उतरने के बाद 2 दिन के बाद बुखार फिर से आ सकता है।
1: अच्छा।
0: और जब ये पहली बार बुखार निकल के जाता है और दूसरी बार बुखार आता है, इन दोनों के बीच का टाइम क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है
1: जी।
0: डेंगू बुखार की एक खासियत और है, ये कहा जाता है कि डेंगू खतरनाक बीमारी है। दरअसल देखा जाए तो डेंगू बहुत ही एक सिंपल बीमारी है। डेंगू के मरीजों में अगर 100 लोगों को बीमारी होगी तो सिर्फ 1% या 5% लोगों को लक्षण आएंगे, बाकी 90% से 95% तक लोग को मामूली वायरल फीवर की तरह होगा। देखिए, बाकी बुखार, वायरल बुखार जिसे आप गले का वायरल बुखार सबसे ज्यादा जानते हैं
1: जी,
0: जो जिसमें खांसी, जुकाम और सिर में दर्द और हाथों पैरों में दर्द होता है, उस बुखार में, या टाइफाइड का बुखार हो जो पानी से फैलता है, या फिर आप और कोई बुखार मान लें, तो उनमें बुखार में और डेंगू बुखार और मच्छर जनित बुखारों में क्या फर्क है
1: जी, जी।
0: फर्क यह है कि जो एक मच्छर ये बुखार को फैलाता है वो एक मच्छर एक रात में 300-300 बार बाइट करता है
1: जी।
0: यानी कि एक घर के अंदर अगर एक मच्छर है तो वो उस पूरे घर के सारे लोग को काट डालेगा। इसके माने यह है, जब डेंगू बुखार शहर में एक आदमी को आता है तो बहुत तेजी से उस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर में एक मच्छर पूरे को फैला सकता है।
1: इसी को डेंगू एपिडेमिक कहते हैं।
0: देखिए, एपिडेमिक तो तब कहते हैं जब उम्मीद से ज्यादा फैलने लगे
1: जी,
0: मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ जाएं, तब एपिडेमिक कहते हैं। अब मेरा आशय यह था कि जो मच्छर जनित बुखार है वो बहुत तेजी से फैलते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार में कई लोग तो यूं ही सही हो जाते हैं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत साधारण बुखार है, लेकिन कई लोग जो है वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनकी जान तक पे बनाती है, ऐसा क्यों?
0: आप देखिए, पहली बात हम बताते हैं डेंगू बुखार की स्टेजेस
1: जी।
0: हालांकि अब WHO ने वो स्टेजिंग चेंज कर दी है, पर पहले हम डेंगू बुखार की 4 स्टेजेस मानते थे। पहला स्टेज जिसे अनस्पेसिफाइड वायरल फीवर कहते हैं, या जो लोग कहते हैं हमें वायरल बुखार हुआ है, उस बुखार में सिर्फ गले में हल्की सी खराश, हाथों पैरों में दर्द और मामूली हड़कन होती है
1: जी।
0: और मामूली सा बुखार आता है, प्लेटलेट काउंट भी अक्सर कम नहीं होती है। अब याद रखें, डेंगू बुखार अगर 100 लोग को होता है तो 90-95 लोग को सिर्फ ये वायरल बुखार की स्टेज हो चुकी होती है।
1: अच्छा।
0: यानी कि जो अगर हम इन लोग का, जिस समय शहर में अगर डेंगू फैला है या कुछ लोगों के डेंगू की रिपोर्टें आ रही हैं, तो ये जो वायरल फीवर वाले जो लोग आते हैं, इनकी अगर आप जांच कराएं PCR, तो इनको भी डेंगू निकल के आएगा।
1: अच्छा।
0: अब ये लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं मामूली दवा लेकर के
1: जी।
0: दूसरी स्टेज होती है जिसे हम डेंगू फीवर कहते हैं या डेंगू वायरल फीवर कहते हैं। इसमें प्लेटलेट काउंट कम होने लगती है, आदमियों को पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं, पॉटी से ब्लड आ सकता है, दांत से खून आ सकता है, या महावारी ज्यादा हो सकती है। ये डेंगू फीवर है
1: जी,
0: जिसमें प्लेटलेट काउंट कम है और ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरी स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में ब्लीडिंग अलग से नहीं होती है, ब्लीडिंग तो डेंगू फीवर में ही होती है
1: जी।
0: डेंगू हेमरेजिक फीवर में कैपिलरी लीक होने की वजह से, नाड़ियों के गीला हो जाने की वजह से, शरीर से पानी नाड़ियों से निकल के लीवर में, पेट में, सीने में एडमिट होने लगता है और BP कम हो जाता है, मरीज को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे मरीजों को लीवर पे सूजन मिलेगी, सीधे हाथ के लंग पे पानी भरा हुआ मिलेगा और पैरों में भी सूजन आ सकती है। ऐसे मरीज डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, उनको बार बार प्यास लगती रहती है और BP कम होता है। BP कम होना डेंगू हेमरेजिक फीवर का मेन लक्षण है।
1: अच्छा।
0: और चौथी स्टेज होती है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन या सीरोसाइटिस। ऐसी स्टेज में मरीज के लीवर, गुर्दे और सांस, तीनों चारों चीजें जो खराब होती हैं। इन चारों स्टेजेस के अलावा एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम
1: जी। जी,
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कैपिलरी लीक यानी कि नाड़ियों के लीक करने की वजह से हो जाता है, पानी निकल जाता है। अच्छा मुकेश जी, हम एक बात आए मैं बताना चाहूंगा, दरअसल प्लेटलेट होते क्या हैं? आप जानते हैं क्या होते हैं प्लेटलेट्स?
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि प्लेटलेट्स के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं और आप तो ये भी कहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं चोट लगने पर खुरंड बन जाता है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो आप इस तरह से समझिए कि खुरंड के बहुत महीन माइक्रोस्कोपिक टुकड़े हैं जो खून में घुले

0: हुए हैं
1: जी
0: और कहीं पे चोट लगने पर वहां पे आके वो चिपट के खुरन बना देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इन प्लेटलेट्स का पहला काम ये होता है कि कहीं से ब्लीडिंग हो तो ये उसको आके खुरन वहां पे बना दें और रोक दें, भले ही ब्लीडिंग इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल।
1: अच्छा।
0: और दूसरा काम होता है सरल भाषा में समझाने के लिए कि इन प्लेटलेट्स का काम होता है नाड़ियों की इंटीग्रिटी को बना के रखना, मतलब नाड़ियों में ये सीमेंट का काम करते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे मान लीजिए किसी के घर में सिर्फ ईंटें हों और सीमेंट न लगाओ या प्लास्टर ना हो तो क्या होगा, बाहर का पानी अंदर आ जाएगा, अंदर का पानी बाहर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो मनुष्य की नाड़ियों से पानी लीक करने लगता है और पानी लीक करने की वजह से आदमी को डिहाइड्रेशन होता है, हालांकि उसको कोई दस्त नहीं हुआ, कोई उल्टियां नहीं हुई, तब भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और उसको ऐसे मरीज को अगर आप ग्लूकोज चढ़ाएं भी तो भी वो ग्लूकोज नाड़ियों से निकल के पेट में सीने में भर जाता है। हमने अक्सर देखा है गांव देहात में कि डॉक्टर लोग वहां के जो वो खूब सारी बोतलें लगा देते हैं और बोतलें अगर पहली स्टेज में लगाएं तो ठीक है, ये कैपिलरी लीक के बाद बोतलें लगाने से मरीज की सांस फूलने लगती है और पेट फूल जाता है। तो ये प्लेटलेट का असली काम ब्लीडिंग रोकना और कैपिलरी लीक रोकना है।
2: डॉक्टर साहब कई जगह ये कहा जाता है कि प्लेटलेट जरूर चढ़ाई जाएंगी, जैसा आपने भी स्वीकार किया, लोग बोतल के अलावा प्लेटलेट चढ़ाने की बात भी करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट चढ़ाने की एकदम जरूरत नहीं होती, सच्चाई क्या है?
0: देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं
1: जी।
0: प्लेटलेट तो को खुरन के टुकड़ों की तरह समझिए,
1: बिल्कुल
0: उनकी जरूरत तब है जब कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है।
1: अच्छा।
0: अगर पेशेंट को कहीं से बड़ी ब्लीडिंग नहीं हो रही है और आप प्लेटलेट चढ़ा दें तो वो बजाय चोट पे चिपकने के वो फेफड़ों में चले जाएंगे, वहां पे चिपकेंगे, वहां पे इन्फेक्शन और निमोनिया करेंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई प्लेटलेट चढ़ाएं तो उनका असर सिर्फ 6 से 8 घंटे तक ब्लड में रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी की प्लेटलेट कम है और प्लेटलेट चढ़ा के आप उनकी संख्या बढ़ा लें। अगर आप आज प्लेटलेट चढ़ाएंगे तुरंत जांच करेंगे 1 घंटे बाद तो प्लेटलेट आपकी बढ़ी हुई मिलेंगी, लेकिन अगले दिन सुबह करेंगे तो प्लेटलेट फिर उतनी ही मिलेंगी जितनी पहले थी। तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत सिर्फ तब होती है जब बहुत मैसिव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, किसी को उल्टियों में खून आ रहा हो या लगातार लाल टट्टी आ रही हो या ब्लीडिंग उसकी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रही हो।
2: ये तो डॉक्टर साहब टेक्निकल बात है, तकनीकी बात है और ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइएगा जो डेंगू के मरीज हैं उनका इलाज किस तरह होता है और क्या खास बातें ध्यान रखनी होती हैं डेंगू के मरीजों को?
0: डेंगू 4 वायरसेस का होता है, डेंगू 1, डेंगू 3, डेंगू 4। जिसको जीवन में पहली बार डेंगू हुआ तो 100 में से 90 लोगों को सिर्फ वायरल बुखार की तरह होकर चला जाएगा। इन्हीं लोगों को अगर दूसरी बार डेंगू हुआ तो वो वायरल फीवर की तरह नहीं होगा, तो उसमें उसकी विभीषिका बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा सीरियस होके होगा। क्योंकि एक बार डेंगू होने से उस टाइप के डेंगू के लिए जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, लेकिन बाकी तीनों प्रकार के डेंगू वायरस से मनुष्य क्रॉस रिएक्शन करने लगता है।
2: तो अगली बार अगर डेंगू होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होगा।
0: जी हाँ, इसीलिए जब डेंगू के सीजन में किसी को वायरल फीवर हो तो उन्हें डेंगू की जांच करा लेनी चाहिए और वो PCR जांच से ही सिद्ध होगा। उन्हें पता चल गया कि आपका जो वायरल फीवर था वो दरअसल डेंगू था, तो अगले साल डेंगू के मौसम में आप बच के रहिए।
2: डॉक्टर साहब अगर कोई मरीज समय पर अस्पताल आ जाता है, उसका इलाज आप शुरू कर देते हैं, तो कितना समय तक लग सकता है डेंगू के मरीज को ठीक होने में?
0: ये निर्भर करता है वो कौन सी स्टेज में आया। अब आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि इतने ज्यादा अस्पताल गांव देहात में खुल गए हैं कि ज्यादातर लोग अपने जानने वाले डॉक्टर से ही इलाज कराते हैं। हमारे पास तक वो मरीज आते हैं जिनकी प्लेटें बहुत कम हो गई, जिनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, गुर्दे खराब हो गए या लीवर खराब हो गया। लेकिन अगर प्रथम या सेकेंड स्टेज में कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये जान लें कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज डेंगू की, यानी कि वायरल फीवर और डेंगू फीवर की स्टेजेस में उसका सबसे बढ़िया इलाज है ORS पीता रहे, तो यानी कि नमक पानी का घोल पीता रहे, तो उसको कोई भी कमी नहीं होगी और उसका फीवर बिल्कुल मामूली वायरल की तरह होके चला जाएगा।
2: डॉक्टर साहब चूंकि इस समय बुखार का सीजन लोग कह रहे हैं और देखने में भी आ रहा है बुखार के बहुत मरीज आ भी रहे हैं, क्या खास बात बताना चाहेंगे आज की सेहत की पाठशाला जो दीपमाला लेकर आया है उसमें क्या संदेश है आपका हमारे श्रोताओं के लिए?
0: मेरा संदेश यह है कि आज के सीजन में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर बुखार हो रहा है तो गले में खराश भी हो, बदन में दर्द भी हो, तो आप फौरन ही ORS पीना शुरू कर दें और अपनी प्लेटलेट्स की और CBC की जांच कराएं। कभी भी अकेले प्लेटलेट्स की जांच ना कराएं, हमेशा CBC की जांच कराएं और

0: जो है बिना जांच के दवाई ना लें।
1: अक्सर जब बुखार होता है किसी भी व्यक्ति को तो मेडिकल स्टोर से पैरासिटामोल की गोली लेकर खा लेते हैं, क्या सुझाव है डॉक्टर साहब, क्या ऐसा करना उचित है? और अगर पैरासिटामोल ही मेडिकल स्टोर से लेकर खानी है तो कब तक खा सकते हैं?
0: देखिए आप, मैं फिर से दोहराता हूं, बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार तो बीमारी का लक्षण है। आप पैरासिटामोल खा के बुखार को दबा देंगे लेकिन बीमारी नहीं जाएगी। आप पैरासिटामोल खाएंगे तो 6 से 8 घंटे तक आपका बुखार कम रहेगा, बदन का दर्द कम रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ पैरासिटामोल खा के काम नहीं करना है, आपको अपनी बीमारी का भी इलाज करना है। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। बुखार तब होता है जब आपका शरीर बीमारी से लड़ता है। बीमारियां होती हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस, लेप्टो, तो जब तक आप मूल बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तब तक दवाई बंद करते सही बुखार बार बार आने लगेगा।
1: डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, एक कपकपी सी होने लगती है, इतना डरावना है डेंगू नाम ही, लेकिन आप कहते हैं डेंगू से डरना मना है।
0: जी बिल्कुल सही है। देखिए डरते समय आदमी जो है मिस्टेक्स करता है, डर की वजह से आदमी उत्तेजना में आ जाता है और गलत फैसले लेता है। डर की वजह से लोग प्लेटलेट्स पे प्लेटलेट चढ़ाते हैं और डर की वजह से लोग प्लेटलेट कम होने पे डॉक्टर पे सवार हो जाते हैं। तो डेंगू बुखार में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरा मानना तो है किसी भी बीमारी में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात है, मारे डेंगू के डर के लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
1: तो सेहत की पाठशाला में आज आपने जाना कि क्या है डेंगू बुखार और किस तरह से ये प्रभावित करता है लोगों को, कितना खतरनाक होता है। डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के साथ अगली सेहत की पाठशाला लेकर आएगा एक बार फिर दीपमाला। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपमाला लाया सेहत की पाठशाला।

सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: छोड़ो
1: अलीशा फिल्म से आप सुन रहे थे अनुष्का मनचंदा, न्यूमिन पिंटो की आवाज में गाना, जावेद अख्तर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।
2: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
2: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
2: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा की आवाज में लक बाय चांस इस फिल्म से एक गाना, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान, लॉय का म्यूजिक।

0: பருத்திக்கு.
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोले हैं 100.4 FM पे. आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है. विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल.
2: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है.
3: फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है. आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध. पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा. हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है. फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली. डायल करें 9068805050. मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050.
4: सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है. चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है, जैसे मस्तानी ये प्रातः है कि सुख की बेला है.
2: दोस्तों, मित्रों और बहनों भाइयों, जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वालों को रविंद्र मिश्रा का सुप्रेम नमस्कार. आज फिर जान है तो जहान है कार्यक्रम में उपस्थित

0: हैं फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली की डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, MBBS, MS, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर कनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से आज आपसे फिर जुड़ी हूँ। हम लोगों ने बहुत बातें करी हैं मोतियाबिंद के बारे में, मोतियाबिंद में कौन सा लेंस पड़ना चाहिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए, किन लोगों को ज्यादा मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे कराना चाहिए। लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दिन हमें क्या क्या करना है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मोतियाबिंद वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, मोतियाबिंद जिस दिन हम लोगों ने हमने निर्धारित कर लिया है कि आज हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो उस दिन हम लोग जो हैं सुबह सर से नहा कर जाएंगे, क्योंकि मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है उसमें सर से नहाने के बाद का थोड़ा सा परहेज है। पहले जमाने में चीरा वाला ऑपरेशन होता था, चीरे वाले ऑपरेशन में पूरा एक महीने का परहेज हुआ करता था, लेकिन अब मोतियाबिंद का जो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें मात्र हफ्ते से 10 दिन का परहेज होता है। लेकिन फिर भी हफ्ते भर सर से ना नहाना कभी कभी गर्मियों में मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पहले से ही जिस दिन हमारा ऑपरेशन हो रहा है उस दिन सुबह सुबह में ही हम लोग सर से नहा लेंगे, ताकि एक हफ्ते तक अगर हमारा सर नहीं धुलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। और साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग अपनी जो लोग शेव करते हैं तो वो अपनी शेव भी कर लेंगे, ताकि एक हफ्ते के लिए या 3-4 दिनों के लिए आंख में या किसी तरीके से कोई केमिकल ना जाए, कोई साबुन ना जाए या फिर कोई चीज और ना जाए। तो इसके लिए हम आंखों में किसी भी केमिकल को दूर रखने के लिए हम लोग सुबह शेव भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि सब मुझसे पूछते हैं वो ये है कि BP, शुगर, एस्थमा, हार्ट या इन सब की या गठिया या किसी भी चीज की, किसी भी मर्ज की आपकी कोई भी दवाई चल रही है तो आप वो उसी नियम से लेंगे। मतलब अगर आप सुबह खाते हैं तो सुबह लेंगे, दोपहर में खाते हैं तो अगर आपका ऑपरेशन है तो दोपहर में भी आप अपना जो बैग में है बैग में वो दवाई लेकर जाएंगे और उसी नियम से दवाई को लेंगे। और जो परहेज, जो खान पीन आपका ऑपरेशन से पहले चल रहा था वही खान पीन, वही सब बातें आपकी ऑपरेशन के बाद चलेंगी। दूरबीन वाले मोतियाबिंद में कोई परहेज नहीं है, आपका जिस तरीके से जो भी रूटीन चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहेगा।
2: डॉक्टर साहब, ये जो बात ऑपरेशन से पहले की हुई है, लेकिन अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या हमारे श्रोता ध्यान रखेंगे, ये बात हमारे श्रोताओं जरूर बताइए।
1: जब आपका ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का, ऑपरेशन मात्र 10 से 15 मिनट की एक सर्जरी होती है। कहने को तो ये बहुत छोटी सर्जरी होती है, उसी दिन जो है पट्टी नहीं लगती है, उसी दिन आपको क्या कहते हैं घर भेज दिया जाता है और उसी समय आपको क्या कहते हैं वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और रात को रुकने की आपको जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि हमारी आंख की रोशनी जो बरकरार है वो अच्छी तरीके से बनी रहे। ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो हमें परहेज रखना है वो हमें ये रखना है कि हल्का फुल्का हो सकता है आंख में से पानी आए या लाली हो आंख में, तो जो पानी आंख में आता है तो वो हमें साफ रुमाल या साफ कपड़ा रखना है और हमको अपनी आंख के नीचे जब वो पानी बहता है तो उसे पोंछ लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का कोई दुपट्टा है या कोई पल्लू है या फिर कोई अंगूछा है उससे हम अपने पसीने को पोंछते हैं, उसी से हम अपने नाक को पोंछते हैं, उसको हम आंख में इस्तेमाल ना करें। और अगर हमें आंख पोंछने की किसी समय ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हल्का फुल्का ऑपरेशन के बाद पानी आता ही है, तो उस पानी को हम साफ कपड़े से पोंछें। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप एक साफ रुमाल अपने हाथ में रखें और उस रुमाल को रोज़ बदलें ताकि हमारी आँख की साफ सफाई बनी रहे। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम गर्दन से नीचे नहाएं। हमें सर से मग्गे से पानी डालना नहीं है, मात्र एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमें नहीं डालना है। और हम जो है गर्दन से नीचे आप 2 बारी भी दिन में नहा सकते हैं, लेकिन चेहरे को, तो इसके लिए आप जो हैं गर्दन से नीचे नहाएं और चेहरे को साफ रुमाल या सॉफ तौलिए को निचोड़कर, पानी से निचोड़कर अपने चेहरे को और सर को पोंछ सकते हैं, है ना। तो ये बात है जब हम दूरबीन वाला ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन चीरे वाला ऑपरेशन में तो बिल्कुल भी आप सर के ऊपर सर से नहीं नहा सकते हैं महीने भर के लिए।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं का तो अक्सर समय रसोई में ही कटता है, भोजन बनाने में, वहाँ का धुआं वगैरह।
1: बिल्कुल आपने सही बात बताई कि क्या कहते हैं महिलाओं को खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन दूरबीन वाले ऑपरेशन में महिलाएं जो किचन में जा रही हैं वो किचन का भी काम कर सकती हैं। सिर्फ एक काम नहीं करना है, वो है छौके मारने वाला, जिससे किसी तरीके का धुआं आंख में ना जाए।

0: के अलावा सब्जी काटना है, रोटी सेकना है, चाय बनाना है और छोटे मोटे जितने भी किचन के काम हैं आप सारे अपने काम कर सकती हैं। दूरबीन वाले ऑपरेशन में इन तरीके का कोई परेश नहीं है।
1: आपकी बातों से एक बात याद आती है कि जिनके जो महिलाएं हैं उनकी बहुएं हैं, तो बहुओं से काम करा लें इन दिनों के लिए। बहुओं को भी ध्यान रखना चाहिए सासू माँ का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर परिवार में हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए ताकि जिस समय जिसको जरूरत हो तो उसकी अच्छे से सेवा हो पाए।
1: सुना आपने, डॉक्टर साहब यही कह रही हैं कि परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, सुख दुख में हाथ बटाना चाहिए, है ना जी डॉक्टर साहब?
0: उसके बाद जो आप दवाई खा रहे हैं वो आप दवाई खा सकते हैं, उसी नियम से आप दवाई को खाना है। जो अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आपके जो परहेज चल रहे हैं उसका भी आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद के बाद आँख में रोशनी अच्छी आ गई है, आप बहुत खुश हैं, तो आप मिठाई बांट तो रहे हैं लेकिन साथ में खा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर शुगर बढ़ती है या किसी वजह से बीपी बढ़ता है तो वो आँख को नुकसानदायक हो सकता है और रोशनी हल्की पड़ सकती है।
1: डॉक्टर साहब, ये भी तो होता होगा कि आप दवाइयाँ देते होंगे खाने के लिए, तो वो दूसरी दवाई बीपी गोली कितनी देर बाद खाएं, ये भी तो जरूरी होगा।
0: जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद की दवाइयां हैं वो बिल्कुल बेसिक दवाइयां हैं। उन दवाइयों से बीपी, शुगर या किसी भी तरीके से, सपोज ऑपरेशन के बाद आपको बुखार हो जाता
1: जी
0: है ना, तो आप अपने, या खांसी हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से खांसी की भी दवाई ले सकते हैं, बीपी की भी दवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनका कोई रिएक्शन उन दवाइयों की वजह से नहीं है। तो अगर बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप बिल्कुल उसके लिए दवाई ले लें और अपनी दवाई कर सकते हैं। चौथी चीज, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि काला चश्मा हर समय लगा के रखना है। ये जो काला चश्मा हम लोग देते हैं ये एक अलग तरीके का चश्मा होता है, ये नॉर्मल जो हमें गॉगल्स हमें बाजार में मिलते हैं उस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि ये चश्मा जो है ये चारों तरफ से बंद होता है और जो बंद चश्मा है वो हमें बचाता है कि किसी भी प्रकार का कोई धुआं, कोई धूल, कोई मिट्टी या हवा, तेज हवा, गंदी हवा हमारी आंख में ना जाए, इस बात से हमें बचाता है। तो काला चश्मा हमको हर समय लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सोते समय हमारे को क्या कहते हैं उतारना है।
1: देखो जरा मेरी आंख में क्या हुआ है।
2: अरे लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है।
1: मोतियाबिंद? अरे वाह
2: अरे वाह, इसमें हंसने की क्या बात है।
1: फोकस नेत्रालय है ना,
2: तभी तो आपको हंसी आ रही है।
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट बेलापुर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
1: डॉक्टर साहिबा, जो काला चश्मा आपने बताया वो गोरे चेहरे पर तो बहुत ज्यादा फपता है, तो लोग उतारते ही नहीं होंगे, इसलिए कहेंगे आप जब आईने में देखते होंगे तो उनका चेहरा बहुत खिल उठता होगा।
0: बिल्कुल, आजकल तो इतने स्मार्ट गॉगल्स आने लगे हैं कि कई बारी बाबूजी ऑपरेशन के बाद आते हैं तो ऐसा लगता है कोई हीरो ही अंदर चला आ रहा हो।
1: खान पान कैसे रहना चाहिए?
0: खान पान के लिए क्या कहते हैं, हमारी तरफ से कोई अलग से परहेज नहीं है। सभी लोग यही पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद हम क्या खाएं, क्या ऐसी कड़क चीज़ हम खाया लें उससे कहीं हमारा लेंस तो नहीं हिल जाएगा, या हम कसकस के चबाएं ना। तो मैं इन सभी भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि दूरबीन वाला जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसमें इतने अच्छे लेंसेज हैं कि अगर आप बोलते हैं या कड़क चीज़ खाते हैं या कोई भी चीज़ आप खान पीन के करने से, आपके लेंस जो है वो नहीं हटता है, नहीं हिलता है। तो आप अपना जो नियम ऑपरेशन से पहले चल रहा था, खाने का जो रूटीन आपका पहले चल रहा था, उसी नियम को ऑपरेशन के बाद में भी रख सकते हैं, ताकि क्या कहते हैं कोई भी किसी भी शुगर का, बीपी का फ्लक्चुएशन हमारे शरीर में ना हो और आप हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज़ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं है। रोटी अच्छे से चबा के खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, आपको दलिया या किसी और चीज़ को खाने की ऐसी ज़रूरत स्पेशली नहीं है। आपका मन है तो खा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है।
1: यानी कहीं अगर मेहमानी में जाएं तो जा सकते हैं आराम से, वहां पे काफी

0: सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहमानी में जाएं आप और खूब खाएं, और क्या कहते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि शुगर नहीं बढ़े।
0: मतलब मटर पनीर खा सकते हैं आराम से
1: हाँ
0: जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं।
0: डॉक्टर कनुप्रिया जी, हमारे श्रोताओं के मन में जिज्ञासा होगी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों को कैसे धोएं, और कहीं धोने पर आंखों का लेंस हट तो नहीं जाएगा, रोशनी खराब तो नहीं हो जाएगी, बहुत सी बातें मन में आती होंगी, ये जिज्ञासा होगी, तो ये जिज्ञासा आप हमारे श्रोताओं की दूर करें।
1: तो मैं सभी श्रोताओं को ये फिर से कहूंगी कि दूरबीन वाले ऑपरेशन में फोल्डेबल लेंस पड़ता है, बिना चीरे के एक छोटे से छेद द्वारा लेंस को डाला जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे को आंख धुलना का तो परहेज रहता है कि हम आंख को पानी नहीं जाना चाहिए। तो आपको आंख नहीं धोनी है, चेहरे को साफ करने के लिए आप उबला हुआ या पका हुआ पानी को तौलिए में निचोड़कर आप अपने चेहरे को पोंछ सकते हैं। आंखों को साफ करने के लिए आजकल आई वाइप्स आने लगे हैं। ये वेट वाइप्स की तरीके से नहीं है, क्योंकि वेट वाइप में काफी खुशबू और काफी केमिकल होते हैं, तो वो हमारी आंख को नुकसान दे सकते हैं। लेकिन आंखों को साफ करने के लिए एक अलग से वाइप या कपड़ा आता है, आप उसको भी ले सकते हैं अस्पताल से, और उससे अपनी आंख को दिन में एक बार पोंछ सकते हैं। क्योंकि जो दवाई होती है, कई बार हमारी आंखों के चारों तरफ जमने लगती है, और जब ये जमने लगती है तो उससे थोड़ी सी गंदगी आने लगती है। तो ये जमे ना, इसके लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम आंख की सफाई का भी ध्यान रखें। कुछ कुछ लोग आते हैं अस्पताल में, जब मुझे 15 दिन के बाद मिलते हैं, तो उन्होंने 15 दिन से आंख की सफाई नहीं करी है, और उनके आंखों के चारों तरफ दवाई जमती ही चली जा रही है। तो उन सभी भाई बहनों को मैं यही समझाती हूँ कि आंख में कोई चीज जाए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख की सफाई भी ना करें। तो आंख की सफाई करनी बहुत जरूरी है, और साफ कपड़े से आप आंख की सफाई दिन में एक बार ही करना है।
0: ये तो आपने बात की कि आंखों कैसे साफ रखें, लेकिन आजकल फैशन चल रहा है कि लोग दाढ़ी रखते हैं, शादी ब्याह में देखते हैं दूल्हे भी रखते हैं, लेकिन जो दाढ़ी बनाना चाहते हैं, कहीं जाना ऑफिस जाना है, एक नियम भी होता है कहीं कि भाई दाढ़ी बना के आना, सेब बना के आना, तो क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद दाढ़ी बना सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेशन वाले दिन अपना सर धोना और दाढ़ी बनाने का कार्यक्रम आप कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम 2-3-4 दिन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसके बाद भी आप अगर चाहें तो हर समय आप शेव कर सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। आंखों को बंद, मतलब एक आंख अपनी बंद कर लीजिए, और अपना, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से या थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ताकि आंख में एकदम छींटे या पानी या साबुन ना जाए। जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो हम आंखों में मेकअप या लेडीज जो है आईब्रो बनाने की
0: बिल्कुल
1: चिंता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: जैसे कि शादी में जाते हैं तो सब लोग मेकअप तो करते हैं, महिलाएं भी अक्सर करती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी, उनकी मान लो आंख बनी है, दोनों की बात बताइए कि मेकअप कर सकते हैं, आंखों में काजल लगा सकते हैं, ये जरूर या दवाई पड़ सकती है जी।
1: हाँ, तो आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपको 1 महीने के लिए नहीं लगानी है, जैसे कि आईलाइनर, काजल, मस्कारा, कुमकुम, चंदन, सुरमा, ये सब चीजें आंख में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है आंख के अंदर, है ना। तो आपको अगर कुछ भी करना है, लेकिन हाँ ये है, कुछ कुछ फीमेल्स आती हैं, वो महिलाएं कहती हैं कि हमें आईब्रो बनवानी है, थ्रेडिंग करवानी है। हाँ, तो आप थ्रेडिंग जरूर करवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आंख में कोई केमिकल ना जाए। लेकिन आंख में मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, आंख में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि मेकअप के बारे में बताई, तो डॉक्टर साहब क्या भारी वजन उठा सकते हैं? महिलाओं को कभी रसोई में आटे का पीपा उठाना पड़ता है, मसाला उठाना पड़ता है ऊंचा करके कैसे भी, तो क्या वो वजन उठा सकती हैं?
1: झुक कर उठाने में कोई परहेज ही नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हम सामान उठा रहे हैं वो 5 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये परहेज मात्र 1 हफ्ते के लिए है, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। भारी वजन के लिए भी मैं यही कहूंगी कि भारी वजन का ध्यान रखें। आपको अगर जैसे कपड़े की बाल्टी होती है वो उठाना है, या पानी की बाल्टी है वो उठाना है, पीपा उठाना है, तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत, मतलब 5 किलो से ज्यादा उसका वजन ना हो। झुक कर काम करना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, और क्या कहते हैं, बाकी और पोछा लगाना है, या कोई भी ऐसे काम है, तो आप ये सारे अपने काम कर सकते हैं, इनमें कोई परहेजी नहीं है।
0: सही कहा आपने, तो परिवार में अगर बेटी हैं बहुएं हैं वो काम कर सकते हैं, अपने आप स्वयं ना काम करें। और खासतौर पे मैं

0: मेरी तरफ से कहना चाहूंगा श्रोताओं से कि जो बहुएं हैं बेटियां हैं अपने मम्मी को काम ना करने दें उन दिनों, बिल्कुल, और उनकी सेवा करें।
1: बिल्कुल, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उसी से हमारा परिवार जुड़ा रहता है और उसी से ही हमारे परिवार की में खुशियां रहती हैं।
0: अब जैसे पूजा अर्चना करते हैं है ना, नमाज भी पढ़ते हैं लोग, तो क्या झुककर नमाज पढ़ सकते हैं, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: हाँ, मैं इसके लिए फिर से, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं सबसे यही कहूँगी कि क्या कहते हैं, जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो आप दीपक जरूर जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगरबत्ती का प्रयोग थोड़ा सा कम करें ताकि धुआं जो है वो हमारी आँख में ना जाए, या फिर अगरबत्ती जलानी भी है तो आप बिल्कुल अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन पूजा के आखिर में फिर अगरबत्ती जला लीजिए ताकि उसका धुआं हमारी आँख में ना हो और आप जलाकर मंदिर से बाहर निकल जाए। इसी तरीके से जब आप नमाज कर रहे हैं तो समस्या आती है झुकने की और वजू की, है ना, तो नमाज करते समय आप झुक तो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, वजू करते समय आपके पानी जो है वो आँख में नहीं जाना चाहिए, आप सूखा कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, पहले तो टीवी होते थे, बहुत दूर होते थे और लोग के बड़े घर भी बड़े हुआ करते थे तो लोग टीवी बहुत दूर से देखते, अब तो एलईडी का जमाना आ गया है, तो क्या भौतिक ऑपरेशन का व्यक्ति या महिला टीवी देख सकती है क्या?
1: हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया रविंदर जी, इस बात के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई लोग जो हैं वो आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और हमने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो मैं इन सब श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन जब हमने किया है तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो हैं आपको अंधेरे कमरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपकी आँख फोक बहुत ही अच्छी बना दी है और आँख को और बढ़िया बेहतर कर दिया है ताकि वो और काम करे,
0: जी
1: हमने आँख इसलिए नहीं बनाई है कि आप काम ना करें या देखे ना, हमने आँख इसलिए बनवाई है आपकी ताकि आप जो है खूब दूर तक देखें और आँख अपने पूरी सीमा तक काम कर पाए, तो आप जो हैं वो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं अंधेरे कमरे में रहने की, आप टीवी देखिए, आप मोबाइल देखिए, आप सब काम करिए, है ना, लेकिन आपको कोई परहेज नहीं है, आप सब कर सकते हैं जब तक आपको आराम है। अगर आपको लग रहा है कि टीवी की लाइट, क्योंकि आजकल एलईडी, जैसे आपने कहा, एलईडी टीवी आने लगे, एचडी टीवी आने लगे हैं, ये एलईडी और एचडी टीवी के कई बारी रंग बहुत तेज होते हैं तो हमारी आंख में चुभते हैं, है ना, क्योंकि नई नई आंख बनी है, आंख को आदत नहीं है देखने की, है ना, आग देख तो रही है लेकिन उसको आदत खत्म हो जाती है जब मोतियाबिंद होता है देखने की, तो कभी कभी लाइट चुभती है, अगर आपको लाइट चुभ रही है तो ना देखें, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप आंखों का पूरा काम लें।
0: डॉक्टर कनुप्रिया जी, पहले एक जमाना था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे तो आंखों में कोई असर नहीं हुआ करता था, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को, कितना अच्छा जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट देखने में।
1: बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट का मजा ही कुछ और था, उसमें जो खूबसूरती थी वो कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट की खूबसूरती रंगों से फीकी पड़ जाती है,
0: कभी पुरानी फिल्में आ जाती हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं,
1: बहुत ही अच्छी लगती हैं।
0: रक्षा, अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं आप श्रोताओं से सबसे ये कहना चाहूंगी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं, ये दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है इसमें चीरा नहीं लग रहा है, टाका नहीं लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लग रहा है, आप उसी दिन अपने घर चले जा रहे हैं, इसमें एक एक दो दो महीने के जो पहले परहेज होते थे वो कुछ परहेज नहीं है, आप अपना 90% काम दूसरे दिन से कर सकते हैं, इसलिए आप अपने तीसरे दिन से आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, टहल सकते हैं और घर के भी सारे काम कर सकते हैं, खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं है, तो इसलिए दूरबीन वाला ऑपरेशन जो है वो बहुत बेहतर है चीरे वाले ऑपरेशन से, दूरबीन वाला ऑपरेशन कराएं, अपनी रोशनी को अच्छे से वापस पाएं और खूब अपना जिंदगी को स्वस्थ रखें।
0: फोकस नेत्रालय में जो सुविधाएं हैं वो हमारे श्रोताओं को कुछ बता दीजिए खास खास।
1: फोकस नेत्रालय में मोतियाबिंद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, ये अपने रोहिलखंड मंडल में पहली ऐसी मशीन है जो कि आंख की बनावट की जांच करती है, हमारे पास हर तरीके के लेंस हैं, लेंस की शुरुआत आप जो है वो कम सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, तो अक्सर ये सवाल उठता है कि हमें कौन सा लेंस पढ़वाएं, कि हम सस्ता वाला पढ़वाएं, हम महंगा वाला पढ़वाएं, तो मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूँगी कि लेंस सस्ता हो या महंगा हो, लेंस महंगे लेंस में ज़्यादा रोशनी नहीं होती, रोशनी सभी लेंस में बराबर होती है, लेकिन कौन सी आंख में कौन सा लेंस पड़ना है, उचित लेंस क्या है, ये जानना जरूरी रहता है। अगर हम आंख में उचित लेंस डालेंगे तब रोशनी पूरी बनकर आएगी, बजाय कि महंगे लेंस

0: डालने से ज्यादा रोशनी नहीं आएगी। ये नहीं होता है कि आप ज्यादा महंगा लेंस डलवा लेंगे तो आपकी आंख में ज्यादा रोशनी आएगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोहिलखंड मंडल में एक ही इकलौती मशीन है, इस मशीन से पहले आंख की जांच कराएं, उस जांच में इस बात को समझें कि आपकी आंख में कौन सा लेंस उचित है। कई कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, आप जो सा डाल दीजिए, आपको जो सा भी लेंस डालना है। तो मैं कहूंगी क्यों ना समझें, आप समझिए पहले इस बात को। आप बाजार जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि आप टमाटर भी खरीदेंगे तो आप देखेंगे ना कि कोई ऐसा तो टमाटर हमारे थैले में नहीं आ गया जो सड़ तो नहीं गया, या आप कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कि कपड़े की क्वालिटी किस तरीके से है, छूकर देखते हैं कपड़ा। तो अपना लेंस भी आप खुद चुनेंगे, अपनी रोशनी भी आप आंख में खुद चुनिए। आप आइए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेस्ट कराइए, आप जानिए कि आपकी आंख के लिए क्या उचित है, और उसके बाद आप अपना लेंस और अपनी रोशनी खुद चुनिए। तो अपने अस्पताल में इस तरीके की मशीन है, ये आप जो हैं क्या कहते हैं जरूर टेस्ट कराएं, इस मशीन से अपने आंख के लिए उचित लेंस के बारे में समझें।
1: इधर आइए, देखो तो जरा आपकी आंखों में क्या है।
2: मुझे तो साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, देखो जरा मेरी आंख में क्या हुआ है।
1: अरे लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है।
2: मोतियाबिंद? अरे वाह,
1: अरे वाह, इसमें हंसने की क्या बात है।
2: फोकस नेत्रालय है ना?
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
4: डॉक्टर साहब, फोकस नेत्रालय सभी लोग जानते हैं और परिचित भी हैं, लेकिन कुछ जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि आयुष्मान है आपके यहाँ और क्या क्या सुविधा के अंतर्गत इलाज किया जाता है आंखों का।
0: फोकस में कैशलेस सर्विसेज हैं और इन कैशलेस सर्विसेज में आयुष्मान आता है, CAPF आता है, CGHS आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली स्कीम है ये भी आती है, और इसके अलावा TPA में जितने भी स्टार हेल्थ पॉलिसी है या क्या कहते हैं पैरामाउंट है, HDFC अर्गो है, मतलब ICICI लॉम्बार्ड है, मतलब जितने भी हेल्थ कार्ड होते हैं आपके, ये सब ही वैलिड हैं, तो आप कैशलेस सर्जरी भी अपनी करा सकते हैं।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली की तरफ से CARI बरेली में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, तो हमने भी फायदा उठाया और पहुंच गए माइक लेकर के, और हमने फिर डॉक्टर साहब से बातचीत की और जिन्होंने फायदा उठाया उनसे भी बातचीत की। आइए सुने। मैम आपका नाम?
5: डॉक्टर अंशुला कालरा, डेंटल सर्जन
2: जी। आज ये CARI में जो कैंप लगा है, इसका उद्देश्य क्या था?
5: इस कैंप का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को हम जागरूक कर पाए कि दांतों से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत लापरवाही ना करें और जागरूक रहें अपने ट्रीटमेंट के लिए।
2: कितने लोग आए थे यहाँ दांत दिखाने के लिए?
5: 30-35 लोगों ने चेकअप कराया।
2: उनके दांतों में आपने क्या पाया, कुछ बीमारी थी या अस्वस्थ थे कैसे?
5: ज्यादातर लोगों में पायरिया की परेशानी मैंने देखी यहाँ पे, अदरवाइज डेंटल डीके भी था, और कुछ लोगों में दांतों में दर्द था, मसूड़ों से खून आना या ब्रश करते हुए ब्लीडिंग होना।
2: ब्रश कैसे करना चाहिए ये हमारे श्रोताओं बता दीजिए।
5: ब्रश करने का तरीका होता है एक पर्टिकुलर, आगे के दांतों में कैसे करना है, पीछे कैसे करना है। नॉर्मली हम ब्रश को सीधा पकड़ के, हॉरिजॉन्टली पकड़ के बस स्क्रब कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो मसूड़ों के पास वाला दांतों का इनेमल है वो खत्म हो जाता है, और इनेमल एक ऐसी चीज है जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको इनेमल बोलते हैं। एक बार अगर इनेमल चला गया तो हम उसको दोबारा रीजनरेट नहीं होता, वापस नहीं आता, तो लोगों को सेंसिटिविटी होने लगती है। तो सबसे ज़्यादा हमारा पर्पस ये है कि सही तरीके से ब्रश करें, आगे के दांतों में अप एंड डाउन एंड पीछे सर्कुलर मूवमेंट देके ब्रश करना चाहिए ताकि इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। हाँ, चमक भी रहेगी, प्लस ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि उसके नीचे वाली लेयर जो डेंटिन होती है वो अगर एक्सपोज हो जाए तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो ठंडा पानी पीना, आइसक्रीम खाना सब मुश्किल हो जाता है।
2: और आइए अब बात करते हैं CARI के निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह त्यागी जी से। त्यागी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।

0: जो सीआरआई में जो आज कैंप लगाया आपको का, इस बारे में थोड़ा बताइए कैसा क्या फायदा हुआ लोगों को।
1: क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल किसी भी संस्था में काफी काम करना पड़ता है और इसमें जो हमारे कर्मचारी है वो तनाव की स्थिति में रहते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि उनका समय समय पर हेल्थ चेकअप कराया जाए। तो इसी कड़ी में ही हमने आज एक यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनसे के जो प्रबंधक या जो डॉक्टर उनसे निवेदन किया कि भाई आप लोग हमारे संस्थान में आके एक जो जनरल चेकअप वो कर लें, जो मुख्य रूप से आज जो है आंखों के बारे में, दांतों के बारे में, या जो जनरल चेकअप होता है बीपी शुगर वगैरह जो है
0: जी, जी, जी।
1: तो उसमें कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और जो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जो यहाँ चेकअप कर रहे हैं
0: जी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आंखों के बारे में, दांत के बारे में जी?
1: देखो सबसे पहले तो है कि आप अपना स्वयं ध्यान रखें
0: जी।
1: और उसमें खान पान, रहन पान या जागना उठना उस पर विशेष ध्यान रखें। और जो भी विशेषज्ञ है, कोशिश तो ये होती है यदि आप 50 से ज्यादा हो जाएं तो उसमें जरूरी बन जाता है जो विशेषज्ञ बोलते हैं कि समय पर चेकअप कराएं ताकि कोई गंभीर बीमारी या लक्षण आने से पहले ही आपको एक सूचना मिल पाए और उसका समय पर इलाज हो सके।
0: धन्यवाद सर। और अब आज का ये कार्यक्रम जान है तो जहान है यहीं पर समाप्त होता है। दीजिए हमें अनुमति। श्रोता नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले सोमवार। बेटा बाजार से प्याज, मटर, धनिया और लाल मिर्च ले आना।
2: पापा मैं बाजार से सब्जी ले आया।
0: अच्छा बेटा, इसमें लाल मिर्च नहीं दिखाई दे रही है, लाल मिर्च क्यों नहीं लाया?
2: आप तो मम्मी से हर समय कहते रहते हो, तुम तो लाल मिर्च की तरह तेज हो।
3: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आँख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
4: जान है तो जहान है, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत, संगीत और ज्ञान का बंपर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया कमेंट्स पे आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को पावन सावन माह के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। दीवार, इस फिल्म से हमने लिया है पहला गीत। आवाजें हैं आशा भोंसले और किशोर कुमार की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। कृष्णा पार दिल्ली से आप हैं सुकेंद्र सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। साधु सहल राजस्थान से ये फरमाइश में भेजी है रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से ये हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश और आदित्य वर्मा। साथ में है शिवान।

0: मंच और प्रसव सिंह। दनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। ये फरमाइश हमें आई है गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुर कमर राही की। आप हैं हमारे पुराने श्रोता टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा। कटा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, ईशु वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से आप हमारे पुराने श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गांव हांडीखेड़ा से जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक शर्मा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। अलखनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन से बरेली से आप हैं मास्टर बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र, इला देवी गंगवार, सुनील यादव, बर्फा देवी, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, महावीर और राज कश्यप। साथ में हैं इनके रमेश चंद सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर और बाबू भाई। जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु मेश्राम, सत्यार्थ और देहारा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। भाटपारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण कुमार, राहुल साहू, चंपा साहू और सुनते हैं ये गीत।
1: कह दूं तुम्हें हाँ। या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म याराना से, आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं राजेश रोशन, और सुनने की फरमाइश भी है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता। सौगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देव के रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हे अंश कुमार चंदन। ये कमेंट है उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया का। ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजला पाल, हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य। आप है हमारे पुराने श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना महाराष्ट्र मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। रोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू टब्बू। चटडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से आप हैं दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, और साथ में हैं आपके श्रीमती इंद्राणी माया साहू। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: बदलते रिश्ते, इस फिल्म में आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के संवेद स्वरम में ये गीत। सुनने की फरमाइश है आप सबकी। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लफीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और प्यारे बेटे चटको मटको। आंवला जनपद बरेली से आप हैं श्री परमाल सिंह जी, मनोहर सिंह, राम सिंह, सुनील सिंह, छोटा सा मुन्ना अभय प्रताप सिंह और साथ में हैं इनके दोस्त मुकेश श्रीवास्तव, कार्तिक पैनुली, सुहेल अली और अभिषेक नेगी। जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आप हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप हैं हमारे पुराने श्रोता ग्राम व पोस्ट हर मटकली, जिला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ये कमेंट है चटडोगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू। आप कमेंट दो बार मत डाला करिए। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। सलार पहलगाम कश्मीर से आप हैं पीरजादा मिराज उद्दीन, निजामुद्दीन, कैसरुद्दीन। मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहब कंगणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी श्री कंगणकर और इनके परिवार के लोग।

जिला बेगूसराय बिहार से आप हैं संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। जिला मोतिहारी बिहार से आप लोग हैं। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद, फैजान मोहम्मद। रावर करनाल से आप हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती और गुड़िया खातून।

खातून। ये कमेंट है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु। इसी गीत की फरमाइश है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन ऋतिका आरोही वाणी मिस्किन परिवार के लोग। शनि बाजार कस्बा उगैती बदायूं से आप है प्रभाकर गुप्ता अवदेश गुप्ता सचिन गुप्ता देव गुप्ता प्रियल गुप्ता कायरव गुप्ता गौरी गुप्ता। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से आप हैं रतन माला मौर्य मुकेश मौर्य प्रिंस मौर्य प्रकांशी मौर्य पुष्पा मौर्य गौरव मौर्य चंद्र प्रकाश मौर्य मनु भाई। तहसील बिसौली जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से राम कुमार प्रजापति राजपाल प्रजापति दुर्गेश कुमार शाके कृष्णपाल शाके वीरेश पाल सुधीर सागर। ये कमेंट है छिंदवाड़ा पेड़ी से नाना जी लाम से मीना लाम से तेजस लाम से जय लाम से हर्षिता लाम से। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना बन्ना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। सफीदो सिटी हरियाणा से ननक खन्ना चंचल खन्ना लवली खन्ना रजत खन्ना लव खन्ना कुश खन्ना और खन्ना परिवार के सभी सदस्य। माँ बालेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू कुलवंतीन देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू। शीतला धाम जूनवानी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू तारा विद्या साहू जितेंद्र किशन सुनीलता ऋषिवन। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेरिया श्री भगत हेमंत कुमार रामखेलावन सिंह पैकरा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिप्पा कपिल चिप्पा ईशान चिप्पा पूजा परिहार और सुनते हैं ये गीत।

कोरा कागज। इस फिल्म में आप सुनेंगे किशोर कुमार के स्वर में ये गीत। शब्द रचना है MG हशमत की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनने की फरमाइश है आप सबकी कस्बा उगैती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भया गुप्ता। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। ये कमेंट आया है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। भंडी रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। इसी गीत को सुनना चाहे स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप से जो कि भाटपारा छत्तीसगढ़ में है। आप हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव और जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से आप हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आलिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया, सुल्ताना अंसारी और परिवार के सभी लोग। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। ओखला संगम बिहार दिल्ली से आप हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता। ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से आप हैं मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद अरशान, अलशिब अबी, मोशोएब और अमीर। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी। उदयपुर राजस्थान से आप हैं हमारे श्रोता बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिला नाचानी, तिलक तंबोली। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल व भानु प्रकाश। ये कमेंट है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर। चतुपुर कुंदरकी से मोहम्मद मुनाजिर खां, फिरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफा गौसियाबी। आप हैं हमारे पुराने श्रोता आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा। अड़ार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास बारसा, रोशनी बारसा और शगुंद बारसा। ये कमेंट है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल।

कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा का। मरहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, रसीद वारसी, नवीद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी। मंसूरी रेडियो लिस्नर का बाजार रोड मुगिसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कब्रू निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब फलक, लुबना और यश मंसूरी। नई मस्जिद करेली से आप हमारे पुराने श्रोता इंतजार भाई अंसारी, बेटी हिज्जा नूरी, प्यार हिना, नत्थू चाचा, सूरज मौर्य, नन्हे जाहिद, दिलशाद भाई अंसारी, मुशर्रफ भाई अंसारी। गांव नांगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा। ये कमेंट है गांव अलगीडाड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, श्रीमती फूलजी यादव। मेन बाजार कुंडवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। राजनगर मधुबनी बिहार से रवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत और चुलबुल रानी। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता। मौर्य इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल मौर्य, मिहिलाल मौर्य, प्रीति मौर्य, रीना मौर्य, रोशनीता मौर्य। चमनपुरा उदयपुर से आप हैं नजीब खान, सबिया खानम, फरीदा बानो, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान। ये कमेंट है मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नन्नी कुमारी का। संबलपुर फांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं आप कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नव उदित सिंह चौहान, वैभवपाल सिंह चौहान, ध्रुवी और प्रथम चौहान। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप। ये कमेंट है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से आप हैं हमारे भाई इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद अंसारी, दिलदार अहमद अंसारी, साथ में आपके मोहम्मद अर्श और मोहम्मद आरिश। हयात कॉलोनी अरसिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, जहानुल होदा। वीवीआईपी रोड न्यू दिल्ली मोती नगर एरिया जोन से आप हैं अनिल मानसी, गौरव, कविता अरोड़ा और इनके परिवार के लोग। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई सुफियान अनस, सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया पोत्रा, मुस्तफा खान। कृपया आप लोग हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में कमेंट भेजा करें। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के लोग। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्वनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा। पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा। एटा रोड गंडुद्वारा से फैजल शेख, नुसरत शेख, कैसर शेख, अरमान शेख, अरीब शेख, शेख परिवार के लोग।

ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। फर्रुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया। बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर। नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और पिया चौरसिया। कृपया कोशिश करें कि एक बार में एक ही कमेंट भेजें। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आप हैं दिलशाद हुसैन। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडलाजी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। तो आइए सुनते हैं फिल्म कोरा कागज का ये गीत।

आपने ट्यून किया है, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और आप सुन रहे हैं

सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद देवेंद्र रावत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आपकी कसम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर किशोर कुमार की और गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। कृष्णा कॉलोनी गदक कर्नाटक से आप हैं संगीता हरसिद्धि बाबू हरसिद्धि लक्ष्मी हरसिद्धि जयश्री हबीब शंकर मंजू काशीनाथ मामा दत्रेंगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसवनी वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा राजनगर कांति निकेतन कुशेश्वर कांति गुप्ता रुद्रा भाई रुद्रा रिद्धि सिद्धि गुप्ता कोमल गुप्ता संगम विहार रतिया मार्ग से धीरज गुप्ता परिचय निश्चल शुभम सत्यम शिवम सुंदरम होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं जयराम खोरवाल सचिन खोरवाल अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल कस्बा क्यूलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से आप हैं हमारे पुराने श्रोता राजेंद्र गंगवार प्रेमपाल गंगवार धर्मवीर गंगवार सचिन अनुज गंगवार अनमोल गंगवार कमलेश गंगवार तुलाराम गंगवार अंकुश मौर्य राजू चंद्रपाल उल्फत शर्मा बबलू गंगवार वेदपाल गंगवार संजीव गंगवार कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेश नेताम कुसुम नेताम शेरकोट बिजनौर से आप हैं नदीम बाकी कलीम बाकी अलीम बाकी अजीम बाकी अदीम बाकी अब्दुल गनी अलमीर जन्नत आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं हमारे पुराने श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर आई मेरा जहां गंज झुंडवारा से शमसुर कमर राही शाहीन फातमा अदनान खान फैजान खान अनु खान सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका सहारनपुर से आप हैं राधा नामदेव अपर्णा नामदेव अभिषेक नामदेव तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म ब्लैकमेल से, आवाज है किशोर कुमार की, गीतकार है रजन कृष्ण और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। आप हैं पीएस यादव अजनबी, अजय पाल सिंह यादव, पवन कुमार यादव, मयंक यादव, प्रभात कुमार यादव, मुन्नी देवी यादव, नीतू सिंह यादव, प्रतिभा यादव, प्रतिज्ञा यादव, नेपाल सिंह यादव, लेकिन आपने अपना पता नहीं भेजा। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं वेद प्रकाश मिटा। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा। जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकूबाई कुशवाहा, निशा कुशवाहा, प्रेम कुशवाहा, इश्का कुशवाहा, खुशी कुशवाहा, ऋषि नारायण कुशवाहा, निधि नारायण कुशवाहा। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, चहन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के लोग। बुलंदशहर से आप हैं हमारे पुराने श्रोता उमेश गौड़ रानी गौड़।

आप हैं इंग्लैंड से, लिसेस्टर शहर से जावेद इनायत और यूसुफ इनायत, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा, नई दिल्ली से गुरमीत सिंह नीता, गंजुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, ताज रेडियो श्रोता संघ लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार, तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से पंटू लोहार पोपलघाट, चंद्रकला पोपलघाट, देवीदास पोपलघाट, वर्ली मुंबई से आप हैं नवाब खान, इशरजहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया, कड़ाचांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजित कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गांव सिधुवाल सूरतगढ़ राजस्थान से इंदिरा जानी, अंकुश जानी, जिला खरगोन सनावन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, ईश वर्मा, रमेशन वर्मा, शेख मुसाबाईजान भाई, राजकुमार बुडाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहिणी, ऋतु और मुकेश जगताप, जिला बदायूं ग्राम गनगोला से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान। तो सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म में आप सुनेंगे सोनू निगम और सुखविंदर सिंह के युगल स्वरों में गीत। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है अनु मलिक ने, और सुनने की फरमाइश है आप सबकी। C2 जनकपुरी न्यू दिल्ली से प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा। इसी गीत को सुनना चाहा है बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिश आदिल और शफक ने। गांव चौलादा से संजय डिंगिया, नमन मुस्कान, कुणाल। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव और विनोद गोस्वामी। यहीं से यूनुस खान, सरताज बेगम, सोफिया खान। बरेली कैंट रेलवे पश्चिम केबिन के पास से विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान श्रीवास्तव। अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, महिमा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, कनिष्का और घर के सभी लोग। इसी गीत की फरमाइश है बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई और विक्की भारद्वाज की। तो सुनते हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का ये प्यारा सा गीत।

आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 FM पे सुबह के 11 बजे हैं। आइए अब सुनेगा सबरंग। सबरंग की पहली प्रस्तुति है फागुनी पाठक के स्वर में ये गीत।

0: FM 104.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
1: आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र और आप सुन रहे हैं सबरंग। सबरंग में अगली प्रस्तुति है कैसर आजाद बदायूनी के और साथियों के स्वर में ये कव्वाली।